0: खाती हला हे दिलियाली हम आला दिले बने ई खाती हाले हम आला दिलियाले खाती आला हे के दिलियाला बने बने रेले लो असुते बड़ा खड़ा रवा लिबा हे मेने ले थे मा खातीला दे दे सोए नवतल दिन असुते बल यीशु स्वांस के नाम में फले आऊ रे
1: बेखे मा खातीला रे तेरे बे
0: ई हमला के दियाले हमा तेरे
1: बे दे दे रवा तिरा हालेलुया
0: केतेलिया माला माती हाना हेले केतेली हा मेले मा तिलिया ले ओबरा सुति देवा स्वामी महर्षि ओबार सी उदाउ करन ने किने केना

0: याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाति अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मनव। मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।
1: रिद्धि वाला गेबिन नेगेने कुमारी कौरदो गीपद रचने सह संगीत निर्माणे गरु मर्सिलिन जयकुडी पीतवा गीत गायने कल्याणी वंशनाथ समग सेविनी राजपक्ष नव संगीताध्यक्षने सुदत प्रियशांत।